0: कथना कथिन आवे तोट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट।
1: देता दिले दे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खा।

0: चाहो
1: अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारिये मूल भंडार
0: अमूल आवे अमूल ल जाए अमूल पाए अमूला समाए
1: अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल परवान
0: अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फरमान
1: अमूलो मूल आख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए
0: आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे बख्यान
1: आखे वरमे आखे इंद आखे गोपी ते गोविंद
0: आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध
1: आखे दानम आखे देव आखे सुरनर मुंजन सेव
0: केते आखे आखण पाहे के

0: अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस।
1: आसन लोए लोए पंडार जो कुछ पाया सवे का वार।
0: कर कर वेखे सिरजन हार नानक सचे की सची कार।
1: आदेश से आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस।
0: एक दू जीबो लख होवे लख होवे लख वीस।
1: लख लाख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश।
0: इत रह पत पबड़िया चढ़िए होए अकीस।
1: सुन गल्ला आकाश की जाई रीस।
0: नानक नदरी पाइये कूड़ी कूड़े ठीस।
1: आखन जोर चपे ना जोर जोर न मंगन दे ना जोर।
0: जोर ना जीवन मर ना जोर जोर ना राज माल मन सोर।
1: जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुक्ति छुटै संसार।
0: जिस हाथ जोर कर विखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए।
1: राती रुती तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल।
0: इसबे धरती थाप रखी धर्म साल तिसबे जीव दुध के रंग तिनके नाम अनेक अनंत।
1: गर्मी गर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार।
0: तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवे निशान।
1: कच पकाई ओथे पाए नानक गया जापे जाए।
0: धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म।
1: केते पवन पानी बैसंतर केते कान महेश।
0: केते बर में घड़त घड़िए रूप रंग के वेश।
1: केतिया करम

0: अपेक्षीय परमी अपोगी अपोक्ते नमो जोग जगेश्वरम परम जुगते
1: नमो नत नारायण गुरु कर्मिणो प्रेता प्रेत देवे सुधर्मे
0: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहं नमो पूप
1: नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगिन मस्तंग शनाने
0: नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र
1: सदा सत्ता सर्व परनाशी नूपे रूपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता अदो उर्दर धंग अगंग
1: सदा सर्वदा सदाता दयालं
0: अशेदी अपेदी अनामग कामं समस्तो पराजी समस्त स्थाम

दया करहु किश मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे जिया डागन बराबर तप भीतर वगै काती प्रणवत नानक हुकुम पछाण सुख होवै दिन राती सतनाम।

0: ताए कराते क्रतो आजुग फिर उठाएंगे निबुझे ताए साजुग रसन तो का तरह हुआ कर तेरा जते काजुर कथो आओ द्वा परा तपे का सतर कथो आओ काल जुग रात गण का पूर्ण कथो आओ महला पहला
1: श्याम कह स्तंभर स्वामी सच में से साच रहे सब कुछ सच समावे सब

सरोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कालो को पतरना जाय तोते टिका ते जमाली तन मिलेशा का अंतर पूजा पड़े कुते बसन जम तुरका बाय छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जय तरंदा महला पहला।

पहले सोचा आप सुचे बैठा है सुचे के रखे ने कोई न पिटो जाए सुचा हो के जीव्या नगापन सलोक होती जाए सुटिया किस लगा दुख अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजा पाए किरता पाक पापी सुतन कटिया थुका पे जित मुख नाम नाच

पर हर प्रभु के सिमरन दुश्मन तर प्रभु सिमरत कश बिघन ना लागे प्रभु के सिमरन अंदर जागे प्रभु के सिमरन भाव ना व्यापे प्रभु के सिमरन दुख

आदि जय मात पिता सुतमीत न पाई मनुआ नाम तेरा संग सहाई जय मां प्यान दूध जम दला है ते केवल नाम संग तेरा चल है जय मुश्किल हुए अत पारी अर को नाम किनमाए उधारी अन पुनः चन करत नहीं तरह अर को नाम कोट पाप पर हरा गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाप सुख नेरे सगल सिष्ट को राजा दुखी अर का नाम जप्त हुए सुखिया ला करोरी बंद ना पर अर का नाम जप्त निस्तर अनक माय रंग तिख ना बुझावे अर का नाम जप्त अगावै जे मार गे जात केला तैर नाम संगो सुहेला ऐसा नाम सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लख बाही।

के गण जाय न को सार का नाम हुआ संतोषा जय पैंड मंद गुबार अर का नाम संघ जयारा जा पं तेरा को ना संजानू अर का नाम ते नाल पछानो जय महाभ्यान तप्त बो काम तैर के नाम की तुम उपर श्याम जय त्रिखा मन तुझे आ करख ते नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जनकोट हर जसकरत संत दिन रात हर रख साधक मात हर जन कैर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान मंता रंग रते रंग एक नानक जन कै बिरत बवेक हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जत का परे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जप कशनाय बियोग जन रात हर नाम की सेवा नानक पूजा हर देवा हर हर जन के मालक जीना हर तन जन को आप्रभ दीना हर हर जन के ओट स्थानी हर प्रताप जन वरना जानी ओत पोत जन रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर जपै हर का भक्त प्रगट नहीं छपै हर की भक्त मुक्त भव करे नानक जन संकेते तरे पार जाते वर कु नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर दुख लथा नाम की महिमा संतरिद वसै संत प्रताप दुर सब नसै संत का संग वडभागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुलक शवर न होए नान गुरमुख नाम पावै जन कोए सलोका बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल पूजिश नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सकल त्याग बन मध्य फिरे अनक प्रकार की बहुत जत

0: ब्रह्मज्ञानी सदानंद लेप हो जैसे जल में कमला लेप हो, ब्रह्मज्ञानी सदानंद दोख हो जैसे सूर सर्प को सोख हो, ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राय रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्मज्ञानी के तीर जेक जो वसुद्धा को खोद को चंदन लेप, ब्रह्मज्ञानी के गनाओ नान जो पाव का सह सुभाओ, ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्मज्ञानी के मनोय प्रकाश जैसे तारू पर आकाश, ब्रह्मज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्मज्ञानी के नाही अभिमान, ब्रह्मज्ञानी उच्चे उच्चा मन अपने सबते नीचा, ब्रह्मज्ञानी से जन पय नान जिन प्रभाव करे, ब्रह्मज्ञानी सल की रीनाथ मरस ब्रह्मज्ञानी चीना, ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्मज्ञानी ते कुछ बुरा ना पया, ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी की निर्मल योग्यता, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्मज्ञानी के नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाह, ब्रह्मज्ञानी पर उपकार उमाह, ब्रह्मज्ञानी के नाई तंदा, ब्रह्मज्ञानी लतावत बंदा, ब्रह्मज्ञानी के वैसो फला, ब्रह्मज्ञानी सो फल फला, ब्रह्मज्ञानी संग सकल उदार, नानक ब्रह्मज्ञानी जपै सकल संसार, ब्रह्मज्ञानी के कह रंग, ब्रह्मज्ञानी के वसै प्रभ संग, ब्रह्मज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्मज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्मज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत, ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी के कर सदा आनंद, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश,
1: ब्रह्म ज्ञानी का है चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मानते, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप।

सर्वगणेश्वरी जिसका अंतराज मान सो नरपति हो सो आन जो जाने में जो गुणवंत सो तविष्टा का जानते आपको कर्मंत कहावे जनमरे भोजन ब्रह्मावे तनभुम का जो करे गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जी केर दे गिर विसावे नानकिया सुखदा के नानकिया मुक्ता के सुख भावे तन मंतावे कर करवावे तन समांक संग न जावे बल उसकर्मान को बल करे आस बल भी तरता कोई विनाश सब ते आप जने बलवंत खिन में हो जाए पसमंत किसे न बदे आभंकारी धर्मराज तिज करे कुवारी गुरु प्रसाद जा कामड़े अमान सो जन नानक दरगे प्रवान कोट कर्म करे उतारे शरम पावे सगले विरथार अणक दस्या करे अंकार नरक सिर फिर फिर अवतार जतन करे आतन मित्र वे हर दर के कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकना आवे सर्व गिरिन जा कमण होए कहु नानक ताकि निर्मल सोए

चीता जब लग मोह मगन समाए तब लग धर्म राय सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक छूटे सस कटे लाकुड़ता वे त्रिपत ना आवे माया पाछे पावे अनक भोग विकिया की करे न त्रिपता वे खब कम रे बिना संतोख नहीं को राज सुगुण मूर्ति व्यर्थ सब काज नाम रंग सर्व को बड़ भागी से प्राप्त होए करण करावने आपे आप सदा सदा नानक जाप

अवतार अष्टपादी संत के दुखन यार जा कटे, संत के दुखन जम तेने छूटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मातोय मलिन, संत के दुखन शोभा दे, संत के हते कर रखे न कोय, संत के दुखन तान प्रष्ट होय, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संसंग दुखी तारे, संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन काग जो लवे, संतन के दुखन चोर जन पाए, संत के दुखन त्रगत जोन गिरमाए, संतन के दुख न तिसन जले, संत को दुखन सब को छले, संत दुखन ते सब जाए, संत को दुख नीच न जाए, संत दुखी का थाव को नाए, नानक संत पावे तो विगत पाए, संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक टिक न पाई, संत का निंदक मात यारा, संत परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तहीन, संत का निंदक दुख यार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत के निंदा दोख में दोख, नानक संत भाव तंस का भी होय मोख, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत का दुखी को डन लागे, संत दुखी सब का को सब त्यागे, संत दुखी मांकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत के दुखना सुख ते टरे, संत के दुखी को नहीं ठाओ, नानक संत भाव तले मिलाए, संत के दुखी आदमी ते रूटे, संत का दुखी किते काज न पहुँचे, संत का दुखी ध्यान प्रमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सासमिन मृत तक की लोथा, संत के दुखी जड़ किसना आपन भी जा पे खाए, संत दुखी गगन राखन हार, नानक संत भाव तले उभार, संत का दुखी उम्र लाए, जो जल बिनु मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पाव की दिन त्रापे, संत का दुखी छुड़े केला, जो बार तिलके तुम्हारे दहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुख सब मिथ्या कहत, कृष्ण नंद का तुरी पया, नानक ज्योति पावे सोए थया, संत का दुखी बिगड़ू हो जाए, संत का दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी न मरण जवाई है, संत दुख न संत का दुखी सा सकाई है, संत दुखी न मरण जवाई है, संत दुखी पूजन आसा, संत दुख चले निराशा, संत का दुख न चिष्टे को है, जैसा भावे तैसा कोई आए, पया कीर्तन मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब कर दिसके करण यार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की सो करो दिन रात, ते आओ सास गिरास, सब कछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थी, अपना खिलाफ करण यार, दूसर कौन के विचार, जिसनु कृपा करे तुसी अपन नाम दे, वड़ भागी नानक जन से सलोक है।

गतिहारस्वय टूटीगणन हार गोपाल सर्वज्ञापे व्रतपाल सकल चिंता स्मरण मारे व्यथा कोई नाय रे मन मेरे सुधार जा भवनासी प्रव्यापया आपने किया कछु न हो जसो प्राणी लोचे को तिस्म नाय त्रे कुछ काम गत नानक जापे करना रूपवान तो ना ही मोह प्रभु की जो सकल कर सो है धनवंता हो क्या को गर्भ है जिन सब की जिसका दिया दर्व है असुरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहता वे जे को होए बह दातार दी दिन हर जाने गवारे जिस गुर प्रसाद टूटे रोग नानक सो जिन सदा रोग जो मंदिर को थामे थमन तो गुर का शब्द मने थमन जो पाखा नाव चढ़त रहे प्राणी जो गुरचन लगत निस्तरे जो अंधकार दीप प्रकाश गुरु दर्शन देख मन होय विकास जो माम ध्यान में मार्ग पावे तो साधु संग जोत पुटावे तिन संतन की बाचो धूर नानक की आलोचा पूर मन मूर्ख काय विलाई है प्रुल के का लिखिया पाई दुख सु प्रदेव हारिया और त्याग तू तेजदार जो कुछ करे सो इस कुमान भूला काय फिरे अजान कौन वस्ता इधर संग लपट रस लोई पतंग राम नाम जा फिर दे माए नानक पासती कर जाए जिस वकर को लै तो आए राम नाम संतन कर पाया तज मान ले मन मोर राम नाम हृदय में तोल ला दिखी संत चंगचालिया और त्याग किया जंजाल धन धन गए सब को मुख जल दर गए सोए व्यापार बिल्ला व्यापारे नानक तक सद बलहारे चरण साध के तो तो पी अल्प साध को अपना जियो साध धूर करो स्नान साधु प्रजाय कुर्बान सास वड़ भागी भाई है सास संगर कीर्तन गाय अनेक विघंधे साधु राखे हर गुण गाय अमृत चाखे उड़के संत रह सर्व सुख नानक ते पाए मृत को जीवा लेन हार भूखे को देव तेदार सवन दान जाके दृष्टि माए प्रोले का लैना पाए सब किस तिस काम करने जोग तिसम दूसर न होग जब जन सदा सदा दिन रैनी सब ते निर्मल करनी कर कृपा सुगुणम दिया नानक निर्मल थिया जाके मन गुरु की प्रतीत तिस जने आवे हर पवचीत भगत सुनिय तै लोय जाके हृदय को होय सच करनी सच ताकी रहत सच हृदय सतमुख है साची दृढ़ साचा कार सच वर्ते साचा पासार पार ब्रह्म जन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक

ही प्रजा पशुपति जब या कार कृष्ण दृष्टिता पापन तब कहते होता जब तारी अपन सुन संवाद तब बैर विरोह के संकुमार जब इसका वरण से न जावत तब हर सौको से व्यापत जब अपने आप पार ब्रह्म तम वो कांक दोत परम अपन के लिए आवर्ती जा नानी करण हर न दूजा जब हो प्रभु के बल धनी ता बंद मुक्त को किस को कोणी जावे कर कम पार तन रुख सुरु को कोण उतार जन मृग प्रसाद सुभाय तब सब सकत को बिठा जब आपे आप अपनी जोत रहे तब कर्ण जस कौन कद डरे आपन जलदाव करने हार नानक दा करे वार अपनासी सुख अपने आसन दा जन मरण को का विनाश जा पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास को गजोए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त किस पुछ दलेखा जब नाथ निरंजन गोचर गाते तब कौन चटे गुण बंधन बाधे अपने आप आपी चर जा नानक आपन उपापी भर जा जय निर्मल पुरुख प्रभुपद होता तब निर्मल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन उपमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चर चर रक्त कहो केश जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय किसे भूकम त्रुतावे करण करावन करण हार नान करते कण समार जो अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कौन माए बाम चर सुभाय जय सर्वकला पे प्रवीण तब एक तेव कहा को चीन जब अपने आप अवतार है तो सगन सगन का विचार है जय अपन ऊंचे अपने अपनेरा तय कुण ठाकुर कुण कही चेरा विस्मन विस्मर विस्माद नानक अपनी का जनवा जय छल छेद पे समाया मुख से व्याप्त माया बस को आप देश तय कुण का नहीं प्रवे जय कह के भगवंता तय कौन अचिंत कुछ लागे चिंता जय अपने आप आप तैयार तय कुण कथे कुण सुने हार बोवें तु ते उचा नानका पस को आपे पहुचा जय प्रचो प्रपंचकार तय कुण मैं किनो विस्तार पाप पुनता पई कावते को नर को सुरक मुझावते आल जाल माया जंजाल हूं मैं मोह परम पै पार दुख सुख मन पवान प्रकार के वो ख्यान आपन खेल आप कर देख खेल संकोचा तव नानक एक जब गद भगत आप जब श्री पसार संप्रता दो उनकी सुबह बाणी आप कौते करें चो जे आपे रस भोग निर्जोग जिस भाव तुझे अपना लावे जिस भाव तुझे खेल खिलावे बेशुमार थाकन ते तोले जो बुलावो त्यो नानक दास बोले सलोक जी जंत के ठाकुर आपे वर्तनार नानकी को बसरिया दूजा कह दृष्टा रस भय आप कथे आ सुन हार आपे का विस्तार जाति भाव तूप आए अपने भाने लय समाए तुम ते बिन ने कुछ होए आपन सो सब जगत बुलाए जाको प्रभु जी आप बुझाए सतनाम सोई जन पाए सो सुंदर सी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र साहब ताके हाथ दीन दयाल नाथ को ना जिस राखे जिस को न मारे सोम वाई सुमन बसारे तिस दया काम को जाए सब श्रेक निरंजन आए जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बार जानो सात गुण दान बेंत पार नानक दास सदा विहार पूर्ण पूरे दयाल सौ सब ऊपर हो कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रो व्याप परत पाले जीन बो भात जो जो रुच सुत से ध्यात जिस भाव जी ले मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन यंत्र विश्वास कर मानिया करण हर नानक जाने जन लाग करे कि नाय तिसकी आसन वृत्ति जाय सेव को सेव अपने हुकुम बुझ परम पाए स्थे पुरने विचार जाके मन उस अहंकार बंधन दूर भय निर्वैर अंधन पूजे गुरु के वैर लोक सुखे परलोक सवे ले नानकार प्रभा पे मिले सात संग मिल करो आनंद गुण गाओ पर ब्रह्म आनंद राम नाम तद करो विचार दृढ़ उदय का करो उधार अमृत वचन हर के गुण गा प्राण तरण कह सुहा आठ पैर पुरवे को नेरा मिठे ज्ञान बिन से अंधेरा सुन उदय सिर दे बसाओ मन चे नाम कुल भाव हल पल दर सुहा राम नाम ध्रुवधार पूरे गुर की पूरी दिखया जिस मन विशेष थी साज प्रख्या मानता नाम चुपल बुलाए दुख दर्द मन ते हो जाए सच व्यापार करो पार इधर कह नि के तुम्हारी का टेक रखो मन माए नानक भर न आए जाए तिसे दूर कां को जय गुरु रखन हारते निरपुज पे सगल फुमटे प्रभु कृपा ते प्राणी छूटे जिस पर राखे तिस ना ही दुख नाम जद मोह सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ता के कारज पूरा
सलमत पुरी अमर जाके दृष्ट दर्शन पेख दृ श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा से पुरांतर जामी पुर गुरदान जिस मन बसे सो निहाल ताके निर्गुण गावत काल अमर पय अमरा पद पाए आ साध संग नानक हर ध्याए आ सलोक

सुन समाधन तय ना दे कह न जय चल समा तिन दे कह श्याप दिखाए नानक सो जी भाए सो अंतर सो बहर सो अंतर सो बहर अंत कड़कड़ व्याप्रप को अंत।

ऐसो गुण मेरो प्रभु जी की न पंच दोख अर अहं रोग एतांत सगल दूर की न रहा बंधन तोर चोर बिखियाते गुरु को।